ग्रहण और दिन को संगची प्रोग्राम पर शुरू की मंगता सु वेचे सबाब पर न्यू जर्मन मेडिकल सेंटर के बाद फ्री मेडिकल कैंप लगी और दगा फ्री कैंप पा जमुंगा सीनियर डॉक्टर जमुंचे को मशर डॉक्टर दे डॉक्टर अकबर कुरैशी से पजेरी निगरानी की द्विवस्ता सो चेकअप चुकुम दे आका फ्री कई नोता सो रातलशे जमुंग दगा फ्री कैंप रजीना भरपूर फायदा कस्तलशे खपल हर किस्म मरीजान अगार अभिस्तलशे कागा मशुमान दी कागा मशरान दी का जमुंगा मैं दिखवाई दी नो तासु द फ्री कैंप रजीना भरपूर फायदा अगा अगस्तलशे कचरी क्लिनिक तरातल वाड़े जमुंग द क्लिनिक एड्रेस मालूम नवी अक्सर खलक द डॉक्टर से तपूस कई अगुई द जमुंगा सेंटर चुकुम दे अगा मालूम नवी जे मालूम वर्त नवी नो जतास्ता दगा एड्रेस खेमा न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर गट मोड़ मैदान न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर गट मोड़ मैदान।

0: और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफ्त और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345923-2860।
1: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील, मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923-2860।
0: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345923।

0: प्लाजा लेडीज मार्केट बड़ग्राम।
1: हाँ
0: अजमेरा प्लाजा लेडीज मार्केट बड़ग्राम। जजाकल्ला खुशहाल आबाद उसी जमंगरोर हमाद सेब द अजमेरे ना हमाद सेब दा खबर के जमंग प्रोग्राम सासो अवरु आओ डेर जात बशवक सरे अवरु मंगता दे देना डेर फायदा मिलावी गीन वाला पाक ते जमंग टूर लपार दा दे हिदायत जरी अव कर जाए ग्रानो रदिन को हमाद से बोई ची सासो दग सीरे पे मंगता पा कम जे के मिलावी गीन पा अजमेरा के दा आमिर कॉस्मेटिक्स दुदु दुकान दे लेडीज मार्केट के खोल तक कोर के दूसरा हम मिलावी की तासु चाहते चिदा पकारी दे पी जनाई नु दुदनाई तासु द कोर न हम तरलासा कवले शही ग्रान रुदुन को जमंगा प्रोग्राम दे आगे वक्त खत्म दिल वाला दे नमंग बतासु ता अखपन दे नग सीरपु एड्रेस से आगा बयान को मुख्तसर एड्रेस से चिदा बतासु ता चरता औ पकम जे के मिलावी की नु ग्रान रुदुन को जमंग मियन डिस्ट्रीब्यूटर दे मोहसिन शाह ट्रेडर्स न दे जेल मोड़ बड़ा ग्राम दो सखबदा तमाम दुकानदारान कॉस्मेटिक्स वाला उसता 5% डिस्काउंट सख मिलावी दो सखद राबिती नंबर 0311-1587-745 दानंगे पर बड़ाग्राम के बदाता मुख्तियार अली मेडिकल स्टोर पेमाल रोड गुनबहार कॉलोनी सदाकत मेडिकल स्टोर गिरौले मोड़ रायल बेकरी दुराहा बाजार बड़ाग्राम रियाज हेल्थ सेंटर बिल मुकाबिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बड़ाग्राम अशिफा क्लिनिक पेमाल अडा बड़ाग्राम जीशान होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर दुराहा बाजार बड़ाग्राम तनवीर अहमद मेडिकल स्टोर शंगरीला होटल जैन मेडिकल स्टोर आमिर कॉस्मेटिक्स अजमेरा प्लाजा लेडीज मार्केट बड़ाग्राम डॉक्टर यार मोहम्मद मेडिकल स्टोर बड़ाग्राम कले पॉइंट दखील कॉलोनी अजलान मेडिकल स्टोर बड़ाग्राम कले गुलडेरी कला बड़ाग्राम हमजा गुलडेरी स्टोर बड़ाग्राम वाजिद मेडिकल सेंटर जबा डॉक्टर कादर शाह सेब सखदाम तात मिला विदेशी पागोड़े के बजमंग दगसीरा पिता मिला विकी सैफुल्ला जन्न स्टोर फजल रहमान सहा साहिबजादा अब्दुल रऊफ मट स्टाफ नीली शंग दग सिरे पे बस मंगता था पजांगीराबाद के हाजी सिराज जहांगीराबाद सखा जाहिद मेडिकल स्टोर जाहिदुल्ला शाह सेब चिनार मोड़ जहांगीराबाद हमदर्द मेडिकल सेंटर गिजबौड़ाई मेन बाजार सरखिली बांडा मेडिकल स्टोर गिजबौड़ाई गिजबौड़ाई बरपाव के गुलजमीन खान लाला दुकानदार सखा दारंगे जमंग आवास का उगज बांडे तरसी नाल तक बजाता उससे मिलावेगी बिलाल अहमद जनरल स्टोर उगज बांडा जमंग आवास का शगई शाम सेरे की सुख अवरी नाल तबराता उससे मिलावेगी अब्दुल्ला जनरल स्टोर शगई मंगा कपतोर घर बरतुने की सुख अवरी नाल तबराता उससे मिलावेगी सवाब गुल जनरल स्टोर बरतुनई बरतुनई बरखड़ के आदत खान सखदा हमता मिलावी दे कोट के मोइन जनरल स्टोर मेन बाजार ताकोट शिना जनरल स्टोर पुल बाजार ताकोट अलई की कजमंग आवास सुख अवरी नाल तक दाता मिला गली नंबर 2 जुनेद खान बना करक बाजार अली याद साथ है जमगर दा गसीरा पे मुताल्लिक जे सक इस्मा हम ता 77787 ग्रान और दिन को जमगर प्रोग्राम वख आगा खत्मीगी तो प्रोग्राम पा आखिर के जा अखपल तमाम ग्रान आवरी दिन को नबा बखन ग्वाडम पा आगा अल्फाजो चे जमा दा खुले नव तलीवी या तासुत पागे बंदी सक इस्मा जरर तकलीफ रसीदली नु जरूर माता बखन कवाई ग्रान और दिन को मंगली चाकाल चा मैसेज पदा प्रोग्राम की नी शामिल करे नु दागना हम बखन ग्वाडू जरूर आइंदा बसासो काल सासु मैसेज पदा प्रोग्राम की आगा शामिल हो मंग सरऊ सही तर सबा पूरी अखबर रोल इजाजत वर्क अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

जी वैसे जरा खड़े रे भाई भूंग रिक्वेस्ट टाइम शो के खड़े वा माता हो बतना वा बेगा मा शो खड़े वा खा ओ नन्बा शो को नाइट के आओ मुंग तबा पते लेगी नन को न कोम बचे उदशे पव अखबाने खा अस्सलाम वालेकुम आई एम सईद हम एहतशाम बाचा ऐद जुदाए जोर में लिदले खुदाया खुदे दे खैर करी नूर भाई न पोएगा काफिर दयार दे जुदा कवीना पता नहीं एहतशाम बाचा

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने।

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन अमन।
7: अमन दरुह संदरदा।

0: 483।
1: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान, कमर चाय।
2: ओह खुदाया, वादरान इस देशो और जामो ही पता होने लगेगा। टोल बाजार में चाण करो और दस रखो की सुटून में उन मुंतल और चर्त चु डिजाइन लिखे हुई अल तब बीही आसमान सर खबर गयी उधड़े में वही चरत लाहौर या पे खबर तलाशम
3: खुश खबरी राम क्लाउड हाउस पेटेग्राम किश्ता
2: राम क्लाउड हाउस पेटेग्राम खा अल तस्ता
3: दहर जा दवस मुताबिक दवदनो औखादियो द जामो गौर पैकेज नश्ता मसलन दहगुई द पिंजो सुटनो पैकेज चिपुखा पिंज दिश जरूर रुपए वो उस यवाजी पोश पार्टी जरूर रुपए की दी चिपके द खादे बकायदा कालीन मरीना खास सूट टिश्यू और प्रिंट शामिल दी
2: वावा द हुडी रखा मामला दा बिल्स पैकेजो मिश्ता
3: आओ वलिना दहगुई बल दातो सुटनो वाला पैकेज दी चिपुखा पिंज पंजोस जरा रुपए वो होस यवाजी पर पिंज देश जरा रुपए की मिलावेगी परे की शादी फ्राक निकाह सूट अड्डाना टिश्यू डिजाइनर काटन सूट लॉन प्रिंट स्विस मेहंदी सूट वन पीस लॉन औदा सिनोर शहाना काली शामिल दी
2: रिख्तिया दासी आला क्वालिटी प्रीमियम स्टाइल और दुमना मुनासिब कीमतुना या इंतजार से ला पाया राजा ची हम उस लाड़ू
3: जी नो पता याद साथ ही राम क्लॉथ हाउस नसीम मार्केट बटाग्राम और द्वीम ब्रांच दे लेडीज मार्केट बटाग्राम नोरो मालूम दपारा या ऑर्डर दपारा पदी नंबर हुमा राबित कवली शेख 0356575501 और बिल नंबर दे 0356595022 राम क्लॉथ हाउस सासु दखा दियो और उधर रंगुनो जामिन।

0: By the way, if someone is want to join us, you can join us in 9913104 if someone say me salam. For a second to work, let me tell you official number 03097111899. अगर कोई बंदा इस तरह है जो मुझे ये कहे कि सालार भाई आप और इमाद भाई दोनों आए हो, वाह वाह वाह क्या शो है, बड़े अरसे के बाद आप दोनों एक साथ, कितना मजा आ रहा है हमें
1: तो,
0: वो कहते हैं यार कि बड़े अरसे के बाद आप दोनों और एक साथ, क्या मजा है रे। मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कॉल नहीं कर सकता हूँ, कि मैं किसी के घर गया हूँ, हमारे घर कोई आया है कॉल करूंगा तो वो कही किसके साथ बात हो रही, कहीं मुझे डांटना पड़े अपनी अम्मी अब्बू भाई बहन और लोगों की, तो मुझे कोई और रास्ता बतलाए तो मैं आप लोगों को बताता चलूं। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज के जरिए से, आप लोग जाएंगे अपने मोबाइल के एडमिशन ऑप्शन पे जहाँ से आप लोग बहुत सारे मैसेज करते हैं वहाँ पे लिखेंगे आरईबी, फिर उसके बाद तुरंत पैसे फिर अपना नाम और अपने लाइक करने, फिर इस पैगाम टाइप करके हमें रवाना कीजिएगा 85 83 पे। If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy, even stuck in something else, somewhere else, so don't be upset, they can be a part of our show to text messages. Go to the admin option, then type REB, then spin the tab, your name, your sweet message, means your thoughts, your feelings and your emotion, then send it to us, and 5 3, your text and your calls will be a part of our show without a waste of time. So let's jump into our topic today. Today we will discuss on the topic, how we success in our life. After a few seconds, I will be back. हाँ भाई दबे बोले खबर आज आया था सब मंगा ये हुआ बेड न्यूज या यू आज मंगा था वैसे अलार्मिंग न्यूज। We have a technical problem, so that's why we will be wind up show. Inshallah, 12 AM. मतलब मैं तेरे मंगा टेक्निकल चारो के मसाला लरून के रिशिज मंगा प्रोग्राम मेंस की बंसी की रिश मंगा प्रोग्राम 12 बजे तो वो हम नरसी हमारे किस्मत पे भी डिपेंड करे, और आप लोग की दुआओं पे, अगर आप लोग की दुआ हमारे साथ रहेगी तो हम आप लोग आगे जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा पाएंगे। हाँ तो टूल नमक की खबर आ इमाद भाई जब मंगा वो छोड़ेला आए पर जिंदगी की कामयाबी दल, प्लीज रोशनी पे वाच।
1: बिल्कुल जिंदगी की इंसान योजे की कामयाबी सिंह पकड़ रही दादी पर कम तरह की पकड़ रही योजे के जेम तकरीबन जबक वादी को गुरम चला के इंसान रागे दी तकरीबन 10 साल हो शु
0: जी
1: 10 साल की तरक्की वाले होने का
0: वजह से आखिर मसल मसल सुन दो खबर मतलब दारे चे आई उस इंसान दी अगे उकार की कंसिस्टेंटली 10 साल हो शु अगे क्या कशन रवान दी मखपड़वान दी नजी परमख्तग न कई
1: परमख्तग न कई
0: दी असल शायद रीजन वजह से दा
1: वजह से
0: ये ऊपर नमंग दा मालूम हो खबल
1: बल मुंच ये उकार को कर गना नम मुशा बसरा पर कर न को
0: यस
1: मुंग बकार को मुसरा पर को
0: अल्लाह रजा दे पारा लस मिला
1: लगे मतलब दा कना
0: लस मिला के बस बस शो शो

0: Show is really nice and very, very fantastic. It's Mafia Queen. Thank you so much for your takes. May Allah give you long life with the bundle of happiness. Welcome, Mr. Imado. Kaise ho?
1: Alhamdulillah.
0: अब बहुत टाइम बाद आए हो शो में. गेट एक्सेलेंट है.
1: बिल्कुल डेर मुझे पस रह गया.
0: जोर जोर में उसे भूलने की कोशिश करता हूँ. अपॉलॉजी क्या लिखा है यार. इट वाज स्लिप ऑफ टंग. प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी. रोज रोज में उसे भूलने की कोशिश करता हूँ और उसी कोशिश में मैं उसे रोज याद करता हूँ. थैंक यू. हम आपका शुक्र गुजार है कि आप याद करते हो. पता नहीं किसको याद करते हो, क्यों याद करते हो, हमें इसके बारे में कोई इलम नहीं है, फिर भी हम आपका शुक्र गुजार हैं.